0: παιδιά.
1: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।